0: art that made it to the gram, and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: सुरमी जेव्हा जातो
1: आणि म्हणून ते काय सांगतात, ज्याला जायचं त्यांनी खुशाल जावा, त्यांच्या अहंकाराचा फुगा रोज फुकतोय. अरे बाबा, जावा जावा म्हणून सगळेच जाऊ लागलेत. का जाऊ लागलेत? त्याचं आत्मपरीक्षण करा, आत्मचिंतन करा. तुम्हाला शोलेतल्या असरानीचा डायलॉग आठवतो ना, आधे इधर आओ आधे इधर जा, बाकी मेरे पीछे आओ. पीछे कौन हो? कोई नहीं है. त्यांच्याकडे फक्त काटे आणि चमचे शिल्लक आहे. कसं वाढणार पक्ष? तुम्हारे पाव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पाव के नीचे कोई जमीन नहीं. कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं. त्यांना कोणीतरी आठवण करून द्या, बदलले, परिस्थिती बदलली आहे. आज ये टायगर आपके सामने खड़ा है. आज मी बघतोय काल परवापासून कुछ कुत्ते रोज भोक रहे हैं, पण मी तुम्हाला सांगतो कुत्ते झुंड में आके भोकते हैं, शेर अकेला आता है. कुत्ते भोकते रहते, टाइगर शिकार करता है. और कुत्ते भोकते रहते हैं और टाइगर दहाड़ता है. ये शिवसेना है, ही शिवसेना है. ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. आगे आगे देखो होता है क्या. आपली शिवसेना मराठी
2: सही मायने में जब उद्धव जी ठाकरे ने 2019 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ में युति में चुनकर आने के बाद सब महाराष्ट्र के साथ में उन्होंने गद्दारी की थी और जिस कांग्रेस और राष्ट्रवादी को हमने हराया था उनके साथ बैठकर उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की, तो उन्होंने खुद के लिए ही पूरे महाराष्ट्र की माफी मांगना चाहिए था.
3: देखिए भी हर टाइम किसी न किसी को अपोलोजाइज करेंगे. कभी कभी अपने पार्टी के नेताओं को अपोलोजाइज करते हैं, कभी कभी कार्यकर्ताओं को, कभी कभी जनता को. ऐसे लोगों को जिनमें जन सेवा और सार्वजनिक जीवन में कोई कैपेसिटी नहीं है, वे सार्वजनिक जीवन में काम नहीं करना चाहते, कुछ और करना चाहते, उनको राजनीति छोड़ना चाहिए. आज साफ बात साफ है कि जो लोग काम करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए, और खास करके शिवसेना के माध्यम से लोगों को पता है कि शिंदे साहब के नेतृत्व में वे काम कर सकते हैं, उनको जगह मिल सकती है, शिंदे साहब लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं, और यदि लोग परिवर्तन करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है.
4: मुझे क्या कहा उन्होंने मैंने सुना नहीं, लेकिन मैंने ये जरूर सुना, मुझे कुछ लोगों ने भेजा कि कांग्रेस का बहुत गुणगान उन्होंने किया है. मतलब आज शिवसेना का वर्धापन दिन है और कांग्रेस का गुणगान उनके मुंह से वहां पर होना, कि बीजेपी के साथ इतने साल हम लोग रहे लेकिन कांग्रेस ने हमारे ऊपर कोई अन्याय किया नहीं. मतलब बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने जो कहते थे कि अगर मेरी शिवसेना की कभी कांग्रेस हुई तो मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, आज उनके ही बेटे आज पूरे सभा में 68th फाउंडेशन डे पे कांग्रेस का गुणगान कर रहा है. जिस कांग्रेस ने शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी का मतदान का अधिकार छीना.
5: And over to Prime Minister's big visit to West Bengal. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Bengal on a two-day visit, his first since the formation of the new government in the state. The Prime Minister will attend the Bengal Foundation Day celebrations at the Tarkeshwar in Hooghly. This marks the first official observance of the West Bengal Day celebrations. The visit carries a dual focus on

0: हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने मेल आईडी हमको दिया, इस पर आप अपनी जो भी कंप्लेन है आप इस पर भेजिए। फिर हमने वो कंप्लेन उस पर भेजे, उसके 2-3 घंटे के बाद उनका फ़ोन आया कि हमारे से गलती हुई, हम नया एडमिट कार्ड आपको इशू करेंगे 4 बजे तक।
1: A massive national security grid is locked in as the NTA prepares for the re-NEET this Sunday. A nationwide mock drill is

0: that the TVK is on a winning streak. And now moving on, a heartwarming moment from Rairangpur in Odisha. President Draupadi Murmu paused her convoy after spotting a group of children along the route. Despite tight security arrangements, she walked up to the youngsters, interacted with them and distributed chocolates. The gesture brought smiles all around before the President of India continued her journey to Paharpur. We leave you with these amazing, beautiful visuals coming in from Odisha. Limelight coming up next.
1: मैडम बहुत बहुत शुभेच्छा
2: छुआ
3: छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ छुआ

0: exam center to Nagpur. Now on, of course, the NTA has changed, made the change that was necessary. And on three occasions, NTA has observed that the center was changed to Abu Dhabi using the candidate's credentials. And twice it reviewed that the center was Abu Dhabi.
1: Right.
0: Despite that, the NTA has accorded to the aspirant's request and change of the center was actioned.
1: All right, Tanushka, thank you very much for getting us those details. Moving on, speaking at the second foundation day of Adani Group's Chintan Research Foundation, Congress MP Shashi Tharoor emphasized that achieving a Viksit Bharat by 2047 requires the cultivation of deep understanding. He also decodes new geopolitical order. Listen in.
2: सही बात है, कोई शक नहीं है कि हमारे देश में चिंतन जैसे चिंतन करना ही जरूरी है. तो एक चिंतन फाउंडेशन के नाम पे ऐसे विषय पे ऊपर सोचना बड़ी जरूरी है, और सिर्फ सोच नहीं, सोच के साथ या उसके बाद एक्शन भी होने चाहिए, कर्म भी होने चाहिए. मेरे ख्याल में इस किस्म की चीज़ें, तो ये सिर्फ दो साल हुए हैं, बहुत किए हैं दो साल में, और करनी चाहिए, बस यही मैं चाहता हूँ.
3: 2047 तक आपने कहा विकसित भारत अगर बनाना है, वो सोच अच्छा है और इस दिशा में इस तरह के थिंक टैंक्स के,
2: और सिर्फ भारत के बारे में नहीं, मैंने कहा कि जो ये लोग चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ, मतलब जो आपको पता है जो डेवलपिंग कंट्रीज कहते थे, ग्लोबल साउथ की भी आवाज़ सुनानी चाहिए. तो ये भारत और भारत के माध्यम से दुनिया और जिस दुनिया के बाग में हम शामिल हैं, इसमें चिंतन फाउंडेशन और उनके लोग अगर काम करना चाहते हैं, तो मैं उनको बिल्कुल समर्थन देने के लिए तैयार हूँ.

चिड़िया है आकाश में जाके उड़ते हैं। स्वीट लिटल सॉन्ग, बट गुजराती लाइन कि अमे नानी नानी चकलियो, चकली का मतलब वैसे तो मैंने कहा चिड़िया, बट अंग्रेजी में जो है चकली इज द स्पैरो। अम्मा चकली क्या होती है, राइट? चकली एक वो नमकीन भी होता है जो खाते हैं, उसको भी चकली कहते हैं। सो आई डोंट नीड टू टेल यू हाउ मच इट इज़ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट म्यूजिक हैज़ सो मच टू डू विद ब्रिंगिंग अप योर चाइल्ड, विद चाइल्ड डेवलपमेंट, और यू कैन गिव इट मोर टेक्निकल टर्म्स, बट द बेसिक आइडिया इज संगीत का बच्चों के साथ एक बहुत बहुत गहरा रिश्ता है। इट्स अ ब्यूटिफुल डीप वेरी वेरी इलास्टिक रिलेशनशिप, उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट दे से, इफ आई वर टू पुट लुक एट द स्लाइटली टेक्निकल साइड ऑफ इट, कि जो द वे द ब्रेन वर्क्स, बोथ द हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन, अपेरेंटली आई एम नो साइंटिस्ट बट आई लव टू रीड अप ऑन दीज थिंग्स, दैट बोथ द हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन अपेरेंटली रिलेट टू मेलोडी एंड रिदम इन वेज। जब आप बच्चों के साथ ये करते हैं, इट रिलेट्स इन वेज कि जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनका ऑल ये मैथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इवॉल्व्स इनटू दैट स्किल एज वेल। फॉर माय सन आई यूज्ड टू सिंग लड्डू के लाल, ही यूज्ड टू लव मिठाई, सो आई मेड अप दिस सॉन्ग लड्डू के लाल चमचम के शाम, ओके, एंड एवरी लाइन वुड हैव सम मिठाई का नाम। काजू की बर्फी हो तुम मेरे, हाँ लड्डू के लाल, जो आपका मन करता है और मज़े से आप गा सकते हो आप ज़रूर उसको गाएं। कई गानों में कहानियां होती हैं, कई गानों

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: Well, joining me now, Ben Smith, the co-founder and editor-in-chief of Semaphore. Thanks, Ben, very much for being with us. I'm here in Geneva, the gorgeous Lake Geneva just behind me. I'm not in Lucerne, where I thought that there would be talks between Iran and America today, America represented by J.D. Vance. But it seems that Israel has other plans, and there is, at least, you know, as of now, no clear sign that there's going to be any permanent truce between Hezbollah and Israel. With that in mind, how tenuous is this peace process between America and Iran?
4: I mean, it's barely a peace process. I mean, the war had largely calmed down before the official signing of this deal by Donald Trump at Versailles, and now seems to be heating up a little. But I think the Iranians have just realized that there's zero appetite from the U.S. to continue the war. Trump reportedly told his aides that he wants it in the rearview mirror. He wants to be done with it. And that gives the Americans fundamentally a very weak negotiating position.
3: Ben, what are the implications of the outcome of this war? Assuming for a moment that it doesn't restart, what is it already on Donald Trump and his politics in a midterm year?
4: You know, other than meaning that great Indian correspondents get to hang out in Geneva with nothing to do, the American public never paid any attention to this war. It never really rose to the top of consciousness. There were no American service members killed in combat. There was, thank God, and Trump the White House didn't. I don't know. It never felt like a nation at war, and so I don't think that there's an immediate sense that the peace deal means all that much, except on Capitol Hill and in certain kind of right-wing hawkish circles where people who'd previously been Trump's allies are truly furious. The Israelis are really angry. But I think broader, there's no real way to sort of spin out of it. You know, the U.S. started this war and certainly didn't win it. And I think that it's, although there's not an immediate political consequence, there is a sense that this is going to really, you know, haunt the rest of Trump's presidency and his legacy.
3: Was there a sense that once prices started rising at the pump, at petrol pumps across the United States, I mean, that was inevitable, no matter how much oil the U.S. produced, that politically that was just, too difficult for Donald Trump to ultimately handle?
4: Yeah, I mean, Trump ran, you know, for all of the noise and the stir.
5: Good evening, hello and welcome. You're watching NETV 24/7. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines first. It is the big NDTV impact in the NEET Aspirant Exam Centre. MES Nagpur NEET Aspirant allotted new exam centre. Exam body accepts the error, cites technical glitch. All Prime Minister Modi in West Bengal today, marking West Bengal Day with a packed schedule that blends history, faith and development, from paying homage to Bengal's legacy to becoming the first Prime Minister to visit the revered Tarakeshwar Temple. Modi is also set to unveil major projects and reach out to farmers and citizens. Big NDTV impact in NEET Aspirant Exam Centre. MES Nagpur NEET Aspirant allotted new exam centre. Exam body accepts error, cites technical glitch after NDTV reports. But NTA claims Abu Dhabi Centre chosen by students login. Earlier aspirant was allotted Abu Dhabi Centre. And ahead of tomorrow's re-NEET examination, authorities are conducting nationwide mock drills and testing a multi-layered security system. With CCTV surveillance, biometric verification and support from security agencies, NTA is aiming to ensure a smooth and a leak-proof retest. Uddhav Thackeray and Eknath Shinde are using Foundation Day events to trade sharp political attacks as rebellion brews, which Sena UBT ranks. With six MPs under the spotlight and speculation of a switch to the Shinde camp, Sena versus Sena showdown is entering a crucial phase. Trump's diplomatic outreach to Iran is gathering momentum. White House envoy Steve Witkoff is on his way to Switzerland, while U.S. envoy Jared Kushner is already there. Switzerland is set to host these crucial negotiations. U.S. President Donald Trump showers praises on Prime Minister Modi, calling him one of the world's greatest leaders. Trump said Modi has chosen to stay out of wars, conflicts, describing that approach as smart and effective, highlighting India-U.S. relations. Trump said business ties between two nations will continue to thrive.
6: Well, I think Modi is very good, yeah. And Modi's a great leader, and we do a lot of business with them.
5: And Prime Minister Narendra Modi in West Bengal on a two-day visit, his first since the formation of the new government in the state. The Prime Minister is at the Bengal Foundation Day celebration at Tarkareshwar in Hooghly. This marks the first official observance on the West Bengal Day. The visit carries a dual focus, honouring Bengal's historical legacy while showcasing center's development push. Prime Minister will unveil key initiatives, as you can see in these visuals right now, across railways, agriculture, fisheries. A major highlight will be the release of the 23rd installment of Prime Minister Kisan, directly benefiting farmers nationwide. Tomorrow, the Prime Minister will lead the 12th International Yoga Day celebrations. So the visuals on your screen right now, the Prime Minister is at the stage right now. You can see Chief Minister of the State, Suvendu Adhikari, the governor is also present there. This is a very important day for the state of West Bengal. The visit is also very critical because the BJP came to power with the promise that there would be new infrastructure, new development, and new script will be written for the people of West Bengal. Cutting across to my colleague Shrishi, who's with us on the broadcast to give us more perspective. Shrishi, give us a sense about what are the key takeaways in this visit of the Prime Minister.
7: Well, a very significant visit of Prime Minister Narendra Modi here in West Bengal after the BJP government has come into power to mark West Bengal Day.
8: Manch par virajman, Rajpal R.N. Ravi ji, yahan ke lokpriya aur urjawan Mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji, anya sabhi mahanubhav, और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव-गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है, ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। পরিবর্তন ভালো লাগেছে তো मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए जहां स्वच्छता होगी वहीं विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है साथियों बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है रेल रोड कृषि मछली पालन इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं साथियों गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा कितने बलिदान दिए कितने त्याग किए 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा नोआखली के दंगे कितने निर्दोष बंगाली मानुष बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे, और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है।

0: bill than any past Republican president.
1: Is this perhaps the latest stage then of America becoming a lot more insular? We know what J.D. Vance had to tell Europe a couple of years back at the Munich Security Conclave, and we've seen them move away from Europe. Their position on Ukraine has changed over a period of time. We've seen America get into the war in West Asia and want to exit the war. And now we are seeing this change in the dynamic between Tel Aviv and Washington. Is this the latest step then in America becoming more insular in its foreign policy?
0: You know, it's America's trying in some ways to become more insular. I mean, as you, of course, have reported, they've also managed to alienate their new friends, the Indians. And then today, their old friends, the Italians, are just furious at them. And the Italian canceled a scheduled trip to Washington because Trump kind of insulted Maloney for no reason. And so it certainly is the U.S. turning inward, trying to become more insular. But of course, at a moment when the U.S. remit is, economically speaking, and particularly in terms of AI, this indispensable global power whose decisions, you know, mean that this week mean that people in, you know, New Delhi and in France can't use the most powerful AI models, which they could use last week. And so I think it's not quite that easy to disentangle.
2: At NDTV, for the past several years, we have been running the campaign Child Marriage Free India, along with Just Rights for Children. Through this partnership, we have been bringing you stories about how India's children are being protected and rescued from a life of abuse and exploitation. We have been also been reporting on Bal Vivah Mukt Bharat, the nationwide movement led by Ministry of Women and Child Development. Today, we will be talking about how another battle is underway, where we are fighting a crisis which robs the childhood of lakhs of children every year, child labour. Last week on June 12th, the World Day Against Child Labour, the Uttar Pradesh government announced its mission to make a child labour free Uttar Pradesh by the year 2027. To talk more about why such concerted efforts across the country are needed to eliminate this crime, we are joined by Bhuvan Ribhu, child rights activist, advocate and founder Just Rights for Children. But before we begin this conversation, here's a look at what happened at the event and why this is a significant step for the Uttar Pradesh government.
3: Panchayat representatives, labor department officials, ministers, policy makers, administrators, law enforcement officials, and other key stakeholders from across UP gathered to announce a critical mission: making Uttar Pradesh a child labor-free state by 2027. This program in Lucknow was organized on June 12th, which is World Day Against Child Labor, an apt day for government of Uttar Pradesh to reaffirm its strong commitment to child protection.
4: Kai aisi jagahein hain jahan bal shram karaya jata tha jo pehle se chinhit thi, aisi jagahon ko bal shram se mukt kiya aur aaj ek saath 141 जगहों को भी बाल श्रम मुक्त किया गया, उसकी घोषणा आज के कार्यक्रम में हुई। 500 के आसपास अभी और भी ऐसे उत्तर प्रदेश में जगहें हैं जहां बाल श्रम कराए जाने की शिकायतें हम लोगों को मिली हैं। हमारा संकल्प है कि अगले चुनाव में जाने से पहले हम उत्तर प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त कर देंगे। ये प्रदेश के लिए ही नहीं, देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आने वाले समय में बहुत जल्द उत्तर प्रदेश बाल श्रम मुक्त होगा।
3: चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, एडवोकेट एंड फाउंडर ऑफ जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन भुवन रिभु वाज प्रेजेंट एज अ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट एट द प्रोग्राम वेयर जेआरसी प्लेड एन इंटेग्रल रोल इन एडवांसिंग द शेयर्ड कमिटमेंट टुवर्ड्स एंडिंग चाइल्ड लेबर अलोंग विद द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। पर्हैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रेजेंस एट द इवेंट were the children who have been successfully rehabilitated and connected with various government welfare schemes. Their stories reinforced the hope that a childhood can be reclaimed and that every child can be provided education, protection and a future. Yet the scale of the challenge remains vast. As per the 2011 census, more than a crore of India's children remain trapped in labour, sometimes within the family, and a staggering number in hazardous industry such as brick kilns, fireworks manufacturing and even in mines.
5: बाल श्रम जो एक समस्या है वो सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, ये एक सोसाइटी की एक बहुत रूट कॉज समस्या है, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल दैट वी कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड. तो बच्चों को का समय होता है शिक्षा का, खेलने का, बच्चों का समय मासूमियत का होता है, उनको किसी भी प्रकार से श्रम में लगाना एक बहुत बड़ा सामाजिक पाप है. तो उसके लिए लीगल एक्शंस हैं, हमारा चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन एक्ट है, और साथ ही साथ पीनल प्रोविजंस हैं. सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है समाज की, हमारे जितने भी हमारे जैसे ग्राम प्रधान आए हैं, पार्षद आए हैं, जितना ज़्यादा जन जागरूकता होगी इस क्राइम के खिलाफ, जितना ज़्यादा लोगों को पता होगा कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और जितने हम लोग बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे उतना ही अच्छे ये प्रयासों का असर आएगा.
3: The Lucknow event underscored a vital truth. Child protection is a shared societal responsibility. True change begins when communities are sensitized to defend every child's fundamental right to safety, education and joy.
5: जब भी हम देखते हैं किसी भी बच्चे को ढाबे, होटल, खेत या कहीं भी, और हमें लगता है 14 वर्ष से कम का है या 14 से 18 वर्ष में किसी खतरनाक क्षेत्र में काम करते हुए देखते हैं, तुरंत हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए. हम चाइल्ड हेल्पलाइन पे फ़ोन कर दें, हम कुछ नहीं तो 112 पे सूचित कर दें सबसे पहले, वो तो सबको पता होता है, और अपने श्रम विभाग के ऑफिस में जाके सूचित कर दें, जहाँ भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें संबंधित सक्षम स्तर तक हम आवाज़ उठा दें, ताकि दंडात्मक कार्रवाई की जा सके, बच्चों को रिहैबिलिटेट किया जा सके, और उनके माता पिता को आर्थिक पुनर्वासन, जितनी भी सरकार की योजनाएं चलती हैं, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, राशन, इन सब से जोड़ा जाए, ताकि बच्चों से काम करा के आर्थिक प्रतिपूर्ति ना कराई जाए.
3: The government of Uttar Pradesh has set the wheels of change in motion, leading from the front with resolve and a mission. But while a government can reinforce the law, it takes an entire society to protect a childhood. The fight against child labor doesn't happen in policy rooms. It happens in our neighborhoods, our marketplaces, and in our daily choices. When we choose to speak up, we protect the future.
2: So this is UP government's ambitious target. You have been working a lot on ground on this issue. Do you think it's a realistic target, achievable target? And how is this initiative different from what has been happening on ground previously?
6: Yeah, definitely achievable hai. और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल विल एट द सेंटर एज वेल एज पॉलिटिकल विल एट द स्टेट लेवल. जब दोनों स्तरों पर राजनीतिक नेतृत्व ये चाहता है कि हम गांव-गांव में काम करें, हम लॉज को ठीक तरीके से एनफोर्स करें, हम बच्चों को रिहैबिलिटेट करें, हम एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी के तहत सोर्स, रूट, डेस्टिनेशन तीनों को टारगेट करते हुए पूरे प्रदेश में एट स्केल काम करें, तो ये डेफिनेटली अचीवेबल भी है और डूएबल भी है. और ख़ास तौर पे डिसाइसिव लीडरशिप कपल्ड विद इनिशिएटिव एंड एक्शंस ऑन द ग्राउंड कैन रियली डू वंडर्स. पिछले 3 सालों में हम लोगों ने, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने, उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रैफिकिंग से और बाल मजदूरी से मुक्त कराया है. 17,000 से ज़्यादा बाल विवाह रोके गए हैं. तो एक्शन तो लिया जा रहा है बच्चों की सुरक्षा पे, लेकिन वो कहीं कहीं स्पोरैडिक है. जैसे ही वो एट स्केल हो जाता है और पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से एक समग्र दृष्टिकोण के साथ उसको एनफोर्स किया जाता है, तो डेफिनेटली पॉसिबल है.
2: भुवन जी, यू हैव बीन सेइंग दैट चाइल्ड लेबर इज नॉट मेयरली अ सोशल इशू, इट्स अ क्राइम. सो हाउ डू यू थिंक यूपी गवर्नमेंट कैन अचीव थ्रू एनफोर्समेंट, लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म एंड ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेशन?
6: Definitely, child labor is fast emerging as an organized economic crime. It is no longer a social justice issue. Child labor is existing on 3 separate different fronts. The first one is where children are working and they are living with their families. The second one is where a child is working as a laborer only in a factory or in a sweatshop and is working 14 to 16 hours a day. The third is where children are being trafficked for the purpose of both economic as well as sexual exploitation. अभी पिछले कुछ वर्षों में बच्चों को मजदूरी के नाम पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैफिक करके लाके स्पा में, मसाज पार्लर में, ऑर्केस्ट्रा में, अलग अलग तरह के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में भी धकेलने के केसेस सामने आए हैं. यहाँ तक कि घरेलू बाल मजदूरी की शिकार जो बच्चियाँ प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से महानगरों में लाई जा रही हैं, आसाम से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बिहार से, इवन उत्तर प्रदेश से, उन बच्चियों के साथ हर तरह का अब्यूज़ होता है और उनको ब्लैकमेल करके एक तरह से एक स्लेवरी में रखा जाता है ताकि वो वापस ना जा पाएं। इन्हीं बच्चियों को ये भी फोर्स किया जा रहा है कि तुम वापस जाओ तो दो बच्चियों को और लेके आओ, नहीं तो हम तुम्हारे फ़ोटो वीडियो सर्कुलेट कर देंगे या तुम्हें हम पैसा नहीं देंगे, बकाया मजदूरी नहीं देंगे। इन दिस सिचुएशन दीज पीपल रिक्वायर द फोर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल हैं। ये गरीबी की वजह से कोई बच्चा जो सिर्फ घर में से निकल के काम करके शाम को घर आ रहा है, ऐसा केस नहीं है। जो भी व्यक्ति बच्चे को लेके जाता है 1000 किलोमीटर दूर, चाहे वो फैक्ट्री के नाम पे ले जा रहा हो, चाहे वो और किसी नाम पे ले जा रहा हो, प्लेसमेंट एजेंसी के डोमेस्टिक लेबर के नाम पे ले जा रहा हो, वो सब का सब एक तरह से स्लेवरी या गुलामी कराने के लिए ले जा रहे हैं और बच्चे हर तरह के अब्यूज़ का शिकार होते हैं। दिस रिक्वायर्स द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड डिटरेंस अप्रोच एट सोर्स, ट्रांजिट एंड डेस्टिनेशन। दिस इज़ वाई द इनिशिएटिव बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल।
2: वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड भुवन जी, हाउ इम्पॉर्टेंट इज कम्युनिटी ओनरशिप इन इरेडिकेटिंग दिस क्राइम? इज इट ओनली गवर्नमेंट्स जॉब टू इरेडिकेट दिस क्राइम, और द कम्युनिटी, द सोसाइटी ऑल्सो हैज़ टू पिच इन?
6: बिल्कुल नहीं। किसी भी तरह के इस तरह की सामाजिक बुराई और अपराध को ख़त्म करने के लिए हम सबको साथ आना ज़रूरी है। दिस रिक्वायर्स अ होल ऑफ सोसाइटी एंड अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। बच्चा न ऐसी जगह से निकल रहा है जहाँ वो इनविजिबल है, अदृश्य है, न वो ऐसी जगह काम करता है जहाँ वो अदृश्य है। तो अगर गाँव-गाँव में हम पंचायत के स्तर पे ये उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं कि चाइल्ड वेलफेयर और प्रोटेक्शन कमेटी को एक्टिवेट कीजिए, पंचायतों को कहा जाए कि हर पंचायत में माइग्रेशन रजिस्टर होना चाहिए, जो भी किसी बच्चे को लेके जा रहा है उसकी डिटेल हो। जब भी कोई बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट होता है तो टीचर्स की और समाज की जिम्मेदारी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी है कि उसे वापस स्कूल में दाखिला दें। बचाव में ही सुरक्षा है, सुरक्षा में ही न्याय है, और न्याय से ही बचाव संभव है। तो प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसिक्यूशन टू क्रिएट अ डिटरेंस फॉर प्रिवेंशन हैव टू वर्क साइमल्टेनियसली। पंचायतों की जिम्मेदारी सोर्स पे है, जहाँ पे समाज की भागीदारी सामने आती है। इसी तरह जहाँ बच्चा काम करता है वहाँ बच्चा नज़र आता है। हम महानगरों में देखते हैं, मॉल्स में 12-13 साल की बच्चियाँ अक्सर दिखती हैं 5-6 साल के बच्चों को का ध्यान रखते हुए। वो कोई आगे बढ़ के अगर उस पर उंगली उठाए और कहे ये अपराध है, प्लेसमेंट एजेंसीज़ को ये कहा जाए कि सरकार का तंत्र तो अपनी जगह काम कर रहा है लेकिन रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी नहीं बच्चे को रखने दे रही किसी जगह काम पे, ये घरेलू बाल मजदूरी कराने के लिए। जिन ढाबों पे हम खाना खाते हैं वहाँ अगर हमें बच्चा सर्व करता है तो हम मना कर सकते हैं कि हम इस अपराध के भागीदार नहीं बनेंगे। तो ये समाज की और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है, दोनों को साथ मिलके ही इसका खात्मा करना है, तभी ये खत्म हो पाएगी।
2: राइट, सो वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस कॉन्वर्सेशन आफ्टर दिस क्विक शॉर्ट ब्रेक।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Well, joining me now, Ben Smith, the co-founder and editor-in-chief of Semaphore. Thanks, Ben, very much for being with us. I'm here in Geneva, the gorgeous Lake Geneva just behind me. I'm not in Lucerne, where I thought that there would be talks between Iran and America today, America represented by J.D. Vance. But it seems that Israel has other plans, and there is, at least, you know, as of now, no clear sign that there's going to be any permanent truce between Hezbollah and Israel. With that in mind, how tenuous is this peace process between America and Iran?
2: I mean, it's barely a peace process. I mean, the war had largely calmed down before the official signing of this deal by Donald Trump at Versailles, and now seems to be heating up a little. But there's, I mean, I think the Iranians have just realized that there's zero appetite from the U.S. to continue the war. Trump reportedly told his aides that he wants it in the rearview mirror. He wants to be done with it. And that gives the Americans fundamentally a very weak negotiating position.
1: Ben, what are the implications of the outcome of this war? Assuming for a moment that it doesn't restart, what is it already on Donald Trump and his politics in a midterm year?
2: You know, other than meaning that great Indian correspondents get to hang out in Geneva with nothing to do, the American public never paid any attention to this war. It never really rose to the top of consciousness. There were no American service members killed in combat. There was, thank God, the White House didn't. I don't know. It never felt like a nation at war. And so I don't think that there's an immediate sense that the peace deal means all that much, except on Capitol Hill and in certain kind of right-wing hawkish circles where people who'd previously been Trump's allies are truly furious. The Israelis are really angry. But I think broader, there's no real way to sort of spin out of it. You know, the U.S. started this war and certainly didn't win it. And I think that it's, although there's not an immediate political consequence, there is a sense that this is going to really, you know, haunt the rest of Trump's presidency and his legacy.
1: Was there a sense that once prices started rising at the pump, at petrol pumps across the United States, I mean, that was inevitable, no matter how much oil the U.S. produced, that politically that was just, too difficult for Donald Trump to ultimately handle?
2: Yeah, I mean, Trump ran, you know, for all of the noise and the Sturm und Drang, the core promise of his campaign was to lower prices. Americans remain very angry about the inflation of the Biden years and of the earlier period. We've been a very low inflation country for a very long time. And inflation is really back with a vengeance. Gas and then a lot of food prices are up, a lot of that driven indirectly by the Strait of Hormuz. And that's a huge domestic political issue. But I think more broadly, I mean, the plan was to get this thing over in a couple of days. And Trump never really had the appetite or a plan to turn this into a long war.
1: Where does this leave the Secretary of Defense, Pete Hegseth, somebody who encouraged this process on all along, even when on the ground, it appeared that there was never going to be a quick in and out for the United States?
2: Yeah, I mean, Hegseth has been one of the war's sort of most forceful cheerleaders, and I think has actually ingratiated himself quite a bit to the president in the White House's view, doing a pretty good job talking about how great American bombs are. I think it leaves him perfectly fine. I mean, the person in the most complicated position right now is Vice President J.D. Vance, who opposed the war internally and Trump and he kind of allowed that.
3: Welcome back to this important conversation with me is Bhuvan Ribhu. Bhuvan ji, we really need to understand from the national perspective, what are the biggest drivers of child labor in our country right now? Is it poverty? Is it trafficking? Is it school dropout? Is it migration or organized exploitation networks?
4: Sabse badi wajah to iski hai lack of enforcement of law. People in the world will do whatever they can get away with. अगर अपराध के ऊपर अंकुश नहीं लगेगा तो अपराधी स्वच्छंद रूप से पूरे देश में विचरण करेंगे, वो घूमेंगे, और जिस अपराध को अपराध माना ही नहीं जाएगा वो तो अपराध फिर पनपेगा ही। बाल मजदूरी जैसे जघन्य अपराध के साथ दरअसल यही हुआ है। पिछले इतने वर्षों में अब पहली बार इसको एक आपराधिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है और BNS में पहली बार ट्रैफिकिंग को एक ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक क्राइम की तरह हम लोगों ने समझा है। इनफैक्ट ट्रैफिकिंग के ऊपर कानून भी बहुत नया है। लगभग 12 साल पहले 2013 में ही निर्भया के पूरे जो जघन्य रेप का कांड था उसके बाद ये जो कानून में बदलाव आए उसके बाद ट्रैफिकिंग का लॉ बना। तो गरीबी एक समस्या है। गरीबी की वजह से बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, उससे वनरेबिलिटी क्रिएट होती है, जिस वनरेबिलिटी का फ़ायदा ट्रैफिकर उठाता है। ट्रैफिकर उस बच्चे को लेके गांव से निकलता है और कहीं बेच देता है जहां माता पिता को पता नहीं है कि वो बच्चा कहां है। वो मिसिंग चाइल्ड है, वो ट्रैफिक चाइल्ड है, वो अब्यूज्ड और एक्सप्लॉयटेड चाइल्ड है। वो एक जगह से दूसरी जगह जब आता है तो किडनैपिंग का, एबडक्शन का, सेल का, परचेज का, ट्रैफिकिंग का, मल्टीपल अपराधों का शिकार होता है। और अंततः ये चूंकि हम उसको डेटरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो जब तक डिमांड बढ़ती रहेगी, लोग मांगते रहेंगे, तो बच्चा, और बच्चा काम क्यों कर रहा है? गरीबी की वजह से ही बच्चा काम नहीं करता। बच्चा सस्ता मजदूर है, इसलिए बच्चे को काम पे लगाया जाता है। देखिए गरीबी क्यों है? माता पिता गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही। उन्हें न्यूनतम मजदूरी देने वाला आदमी उन्हीं के बच्चे को 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये हफ्ते पे मजदूरी देने तैयार है क्योंकि बच्चा सस्ता मजदूर है। तो ये एक दुष्चक्र है, एक विशियस सर्कल है, जिसको तोड़ने का एकमात्र जरिया यही है दैट वी कॉम्बैट इट विद एन सिस्टमैटिक एंड सिस्टमिक अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। एक तरफ डेटरेंस क्रिएट किया जाए ताकि डिमांड ख़त्म हो, दूसरी तरफ सप्लाई एंड पे, पंचायतों पे, गांव-गांव में काम किया जाए ताकि इस तरह के मॉडल बने। अभी हम उत्तर प्रदेश में सरकार के साथ मिलके, नीति आयोग के साथ मिलके 20,000 सुरक्षित बाल ग्राम बना रहे हैं, जो कि ऐसे मॉडल विलेज होंगे जहां कोई बच्चा पलायन या माइग्रेशन नहीं करेगा बगैर पूरी डिटेल के कि किसके साथ कहां जा रहा है और क्यों। कोई बच्चा अगर स्कूल से ड्रॉप आउट करता है तो उसे या तो स्कूल से दोबारा जोड़ा जाएगा, या स्किल से जोड़ा जाएगा, या उसके परिवार में अगर इस तरह की समस्या है, गरीबी है, तो उसे किसी सरकारी योजना से जोड़ा जाएगा, चाहे स्कॉलरशिप से, चाहे और पेंशन से, दूसरी चीज़ों से। चाइल्ड वेलफेयर और प्रोटेक्शन कमेटी, जो एक मिशन वात्सल्य का पार्ट है, उसको बनवाया जाएगा और स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि बच्चे किसी भी तरह के अपराध के या किसी भी तरह की सामाजिक बुराई के शिकार ना हो। वी सेव वन जनरेशन एंड दैट जनरेशन विल सेव ऑल दी अदर जनरेशन टू फॉलो। विद दैट बिलीफ वी वॉन्ट टू सेव टूडेज जनरेशन।
3: Right. Friday's event was also attended by a large number of dignitaries who pledged their support and commitment to a child labor free Uttar Pradesh. Also present at the event was a large crowd of concerned citizens, parents and stakeholders from the ecosystem of child protection. This is what they had to say.
5: कानून तो है, इसके साथ साथ अपने अपने मन में एक संवेदनशीलता आना है। कोई हम देख रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में हम देख रहे हैं ये बाल श्रमिक है, हमको पता है वो 10 साल का, 11 साल का, नहीं तो 8 साल के लड़का है, लड़की है, और तुरंत उनसे पूछना चाहिए, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी इतना कदम तो उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, इस पर हर करके वो किनारे करते हुए नहीं जाना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, कम से कम पूछना चाहिए, जानकारी वहाँ पे पुलिस स्टेशन को देना चाहिए, नहीं तो श्रम विभाग को देना चाहिए, सो हमारा अधिकारी जाके उनको छुड़वा सकते हैं। इस प्रकार एक समुदाय में हम एक हर नागरिक का एक जिम्मेदारी है, ये बड़ी जिम्मेदारी भी है।
6: मैं समझता हूँ कि आज जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका कारण ये है कि देखिए, बाल श्रम एक समाज के लिए अभिशाप तो है ही, और किसी भी इस प्रकार की कुव्यवस्था को निवारण करने के लिए अत्यंत आवश्यक यह होता है कि हम सरकार की प्रतिबद्धता के लिए कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन तो अवश्य कराएं, किंतु जो जन जागरूकता है वो किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, किसी भी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा काम करती है। इस प्रकार के आयोजनों से जो सामाजिक चेतना फैलती है, इस प्रकार के आयोजनों से जो समाज में जागरूकता फैलती है, उसका बहुत बड़ी भूमिका है।
3: How important is rehabilitation in eradicating child labor?
4: बिल्कुल, rehabilitation के बिना तो ये पूरी की पूरी जो हमारी मुहिम है वो व्यर्थ हो जाएगी. Rehabilitation का भी एक पूरा एक चेन है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट ऑफ रेस्क्यू. जिस वक्त आप बच्चे को रेस्क्यू करते हैं उसी वक्त से रिहैबिलिटेशन की यात्रा या जर्नी शुरू होती है. एंड इट मस्ट एंड इन द रीइंटीग्रेशन ऑफ द चाइल्ड इनटू मेनस्ट्रीम सोसाइटी. तो यदि हम ये सोचें एक मिनट के लिए कि बच्चे की उस पूरी यात्रा में क्या क्या होना है, तो पहले वी हैव टू इंश्योर दैट देर इज़ नो रिविक्टिमाइजेशन. ऐसा तो नहीं कि बच्चे को हमने एक तरह के एक्सप्लॉयटेशन से निकाला और दूसरी तरह के एक्सप्लॉयटेशन में जोड़ दिया, या वो फिर दोबारा रीट्रैफिक हो गया. बच्चा जिन हालात से निकला था, यदि हमने उन हालात को कॉम्बैट नहीं किया तो वो तो फिर ट्रैफिक हो जाएगा. दूसरा, बच्चों की रिहैबिलिटेशन में बच्चों की भागीदारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चा ही बता सकता है कि वो पूरी चेन क्या थी एक्सप्लॉयटेशन की. अगर किसी बच्चे को मान लीजिए भुवन रिभु लेके निकला और भुवन रिभु ने वो आपको दे दिया, आपने किसी और को दे दिया, किसी और ने किसी और को दे दिया, ये बात सिर्फ भुवन रिभु जानता है और वो सॉरी बच्चा जानता है और कोई नहीं जानता. तो बच्चे को ये भी सम्मिलित करना है, उससे पूछना है कि बेटा तुम्हें कौन कौन ट्रैफिकिंग में शामिल किया था, उस सब का नाम बताओ ताकि हम उस पूरी चेन को आइडेंटिफाई करके जो डेटरेंस है, जो कानूनी प्रहार है, वो पूरी चेन पे कर सकें. दूसरा, तुम काम किसके लिए करते थे. टू कॉम्बैट ट्रैफिकिंग एज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑन वन साइड वी लुक बीनीथ द सर्फेस एंड ऑन द अदर वी फॉलो द मनी. तो हमें बच्चे को सेंटर में रखते हुए उसकी पूरी यात्रा की, वो एक्सप्लॉयटेशन की जगह पे आया कैसे था और जहाँ एक्सप्लॉयट हो रहा था वहाँ से उसका जो पैसा था या गुड्स थे या सर्विसेज थे वो कहाँ जा रहे थे, उस सबको मैप करके उस सबको कॉम्बैट करने की ज़रूरत है. और दूसरी तरफ बच्चे को शिक्षा से, बच्चे को स्किल से और बच्चे को सरकारी योजनाओं से जोड़ना ज़रूरी है. इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, ट्रॉमा काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और एक पूरे इस रिहैबिलिटेशन फ्रेमवर्क की ज़रूरत है. जब मैं आपको कह रहा था कि 1,00,000 बच्चों के रिहैबिलिटेशन का हम इस साल बीड़ा उठाए हैं, तो उसके पीछे की सोच यही है कि इन बच्चों के रिहैबिलिटेशन से भारत में पुनर्वास की एक नई दिशा, एक नई तरह की सोच जन्म लेगी.
3: वन लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू इज, इफ यूपी गवर्नमेंट मैनेजेस टू अचीव इट्स टारगेट, विल इट बी the role model state for the entire country?
4: I think not. It will become the model state for the rest of the world. There is no state as populous. UP ki to population, UP has a population more than over 100 countries of the world. So UP will become a model for the rest of the world. Also because UP is a source, it is a transit point as well as a destination. UP has international borders. UP has interstate and international trafficking. So UP has all sorts of these issues. Despite that, with decisive leadership, with actions on the ground, with panchayats participation, with multi-stakeholder collaboration and this whole of government and whole of society approach, if UP manages to combat and eradicate child labor and trafficking, UP will become a model for the world that the end of child labor is possible. The world has missed the Sustainable Development Goal deadline of 2025 because nowhere in the world people have been able to actually work at scale and with this sort of cohesiveness. So therefore, I believe UP has taken upon itself one of the biggest responsibilities also to showcase India as the nation which is the model for child protection for the entire world.
3: Thank you so much for speaking to us. So as India is set to achieve its goal of eradicating child labor from every state, initiatives by state and central government along with the on-ground efforts by Just Rights for Children are helping to turn this dream into reality. And our network will continue to bring you more stories about this grave crisis and what India is doing to fight it.
7: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
8: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
9: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Harisha Sehgal.
8: The show that sets the prime time agenda.
9: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
8: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
10: NDTV tops the Reuters Institute. India reach rankings again. Number one in offline and online news reach. For the sixth year in a row, audiences continue to choose NDTV across television and digital. NDTV, trusted across every screen.
11: Launch control, 0 to 100.
12: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
13: This car makes no sense, yet it makes every sense.
14: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
15: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
10: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
16: So many attacks.
10: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
16: It's incredible.
10: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
16: Welcome to Left, Right and Center.
10: Hard facts.
16: War-struck country.
10: Hard questions.
16: In the Ukraine.
10: 30 years of trust.
17: In the Kargil area.
16: North Ukraine.
18: In France. In Italy.
16: At Srinagar.
18: I am Srinagar.
16: Vishnu Shom for NDTV.
10: Vishnu Shom. Only on NDTV.
19: The news.
20: Ayush. Since when do we do scripts? Picture this, the biggest stage, floodlights,
19: wow.
20: 4K, the works.
19: Where's the hook?
20: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
19: Where's the hook?
20: Think about this, front page advertisements and hoardings.
19: Bro, where's the hook?
20: Cross-platform, digital first, virality.
19: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You've got to be real in a world of reels. You've got to be original in a world where everything seems generated.
20: That's it. That's what we're looking for.
19: The best campaigns.
20: The hottest trends.
19: The smartest brand moves on our new show.
20: But wait, what do we call it?
19: The Hook.
10: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
21: This location from Tel Aviv
10: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
22: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
23: The Ayatollah Khamenei is gone.
24: There has been a missile attack right behind you.
25: And we need to rush into a shelter.
26: Heading there.
27: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
10: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
28: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
29: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
30: High red, check the audio, high red, check the audio.
28: Let's do it, let's start.
31: Breaking story, we're jumping straight into it.
28: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
32: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
28: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
33: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
32: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
28: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
34: President Trump, what about the import of Russian oil? Sanctions on the import of oil.
35: We are looking at that. We're seeing how far the price of oil comes down. It's really tumbling. It's, I guess, 74, 75 right now. So it's down. It's soon going to be at the number that it was 4 months ago. It's pretty amazing. And on top of that, we will have an Iran without a nuclear weapon, which I can tell you the Prime Minister feels very strongly about that, too.
0: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
35: I think it's a great relationship. I can tell you this. If anybody attacks that man, we're going to be there.
1: Step into NDTV Lifeline, your trusted guide to better health across every screen and every format. Your weekend destination for expert voices.

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
4: देश का टायर जेके टायर।
5: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
6: Hello and welcome to Watching Prime 5.

0: transparent plastic pouch. Candidates may wear articles or objects of faith, depending on which faith they belong to. They have to report at the examination centre early to facilitate frisking and checking that may be mandatorily conducted at different centres. Candidates may wear full sleeve garments if required. This is something that is not allowed in certain examinations, but indeed it's allowed. Slippers and low-heeled footwear, that is the preferred option. Candidates in high heels may face additional screening as well. So those are the guidelines that have been issued by the authorities. The exam all set to happen in few hours from now. Now, the Ram Mandir donation row has rapidly escalated from allegations of financial irregularities to a full-fledged SIT investigation. The controversy began on the 7th of June with claims of 5 to 7 crore in alleged misappropriation of devotees' offering, triggering a political storm and demands for transparency. As questions mounted, the Yogi Adityanath government constituted a 3-member special investigation team on 13 June, giving it 15 days to submit its finding. Since arriving in Ayodhya, the SIT has examined donation records, questioned trust officials, scrutinized cash counting process, reviewed the CCTV and verified records related to donated jewellery and the valuables in question. Multiple complaints have been filed. Dozens of employees come under scanner and investigators are now tracing the money, examining the role of key suspects. With the probe entering a crucial phase, all eyes are on the SIT's report, which is expected to determine a point in the direction whether this is a mere administrative lapse or a criminal wrongdoing or perhaps a larger conspiracy involving temple donations.
1: Ram bhaktoon par, kar sevakon par, goli chalane aur jai sri ram bolne par laathi bhaanjne wale log aaj updesh dene chale hain, updesh dene chale hain. बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं.
2: एसआईटी किसकी जांच कर रही है? ना एफआईआर है, किसकी जांच हो रही है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन ही नहीं है. ये तो केवल लोगों को एक भ्रमित करने का माध्यम है और लोगों को ठगने का माध्यम है. एफआईआर दर्ज ही नहीं और जांच कर रहे हैं इस, और जो जांच अधिकारी है वो खुद प्रयागराज के स्टैम्पेड में, वो खुद उसमें गुनाहगार है. विश्व विश्वास पंत उसके अंदर उसको खुद गुनाहगार है. तो ये साबित करता है पूरी तरीके से एसआईटी केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए. और कोई 15 दिन नहीं, 15 महीने ले लें, ये जितने बड़े बड़े उसमें जो मछलियां हैं उनको पकड़कर जेल भेजे. मेरी मांग है तत्काल जितने 4-5 लोगों का नाम आ रहा सबको जेल भेजा जाए.
3: ये सच बात जो है अपने आप निकलती है, ये बयानबाजी तो खुद वो कर रहे हैं. जब एसआईटी जांच चल रही है तो उनको इस पर कुछ बोलने नहीं चाहिए. ये दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, क्या होगा, आने देते तो ये बहुत बड़ा मामला है, राष्ट्र स्तर का मामला है.
4: कमाल हो गया कि वो योगी आदित्यनाथ जो आरोप लगते ही बुलडोजर चलाने की बात करते थे, वो सरकार जो तुरंत कहती थी कि कब किसकी गाड़ी पलट जाएगी, जिस सरकार ने कभी जांच और कानून और कोर्ट का इंतजार नहीं किया, आज वो सरकार कह रही है कि जांच का हम इंतजार करेंगे. क्यों इतनी सहानुभूति चंदा चोरों के साथ क्यों है? क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ ये कहते कि हमारे पास जिन जिन के नाम आएंगे कल ही उनके घरों पर बुलडोजर चलाऊंगा और उनके घरों को निस्ते नाबूद कर दूंगा. ये सहानुभूति चंदा चोरों के प्रति क्यों दिखाई जा रही है, इसको समझने में मुझे मुश्किल है.
5: आपसे बेहतर राम मंदिर को और राम मंदिर परिसर को कौन समझता है? आज चप्पे चप्पे में सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हैं, चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर कर रहे हैं और फिर एक दुरुस्त ऑडिट सिस्टम ट्रस्ट के जरिए लागू भी किया गया, बावजूद इसके ये चोरी हो जाती है.
6: जो आपने अभी कहा कि सिस्टम लागू किया गया था, आदेश निर्देश तो जारी हुए, मैंने देखा है वो निर्देश कि काउंटिंग में किस प्रकार से अनुशासन का पालन होना चाहिए, सभी विवरण उसमें हैं.

0: since morning so that the entire exam process tomorrow remains transparent. All of the important sheets like the OMR sheets and the question papers this time has been entrusted with the paramilitary forces to ensure that there's no leak that takes place, and also that during the examination process too, all of the CCTV cameras will be examined thoroughly so that the exam takes place in a smooth way and there are no cheating practices that happen while the NEET UG exam is underway. From Mumbai with video journalist Sagar, this is Sujata Dwivedi reporting for NDTV.
1: But what are the guidelines that the authorities have issued for the students? Now, the students can carry a transparent water bottle. That's allowed inside the examination hall. They can also carry their admit card in a transparent plastic pouch. Candidates may wear articles or objects of faith, depending on which faith they belong to. They have to report at the examination center early to facilitate frisking and checking that may be mandatorily conducted at different centers. Candidates may wear full sleeve garments if required. This is something that is not allowed in certain examinations, but in NEET it's allowed. Slippers and low heel footwear, that is the preferred option. Candidates in high heels may face additional screening as well. So those are the guidelines that have been issued by the authorities. The exam all set to happen in few hours from now. Now, the Ram Mandir donation row has rapidly escalated from allegations of financial irregularities to a full-fledged SIT investigation. The controversy began on the 7th of June with claims of 5 to 7 crore in alleged misappropriation of devotees' offering, triggering a political storm and demands for transparency. As questions mounted, the Yogi Adityanath government constituted a 3-member special investigation team on 13 June, giving it 15 days to submit its finding. Since arriving in Ayodhya, the SIT has examined donation records, questioned trust officials, scrutinized cash counting process, reviewed the CCTV and verified records related to donated jewellery and the valuables in question. Multiple complaints have been filed. Dozens of employees come under scanner and investigators are now tracing the money, examining the role of key suspects. With the probe entering a crucial phase, all eyes are on the SIT's report, which is expected to determine a point in the direction whether this is a mere administrative lapse or a criminal wrongdoing or perhaps a larger conspiracy involving temple donations.
2: Ram bhaktoon par, kar sevakon par, goli chalane aur jai Sri Ram bolne par lathi bhanjne wale log aaj updesh dene chale hain, updesh dene chale hain. बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं.
3: तो एसआईटी किसकी जांच कर रही है? ना एफआईआर है, किसकी जांच हो रही है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन ही नहीं है. ये तो केवल लोगों को एक भ्रमित करने का माध्यम है और लोगों को ठगने का माध्यम है. एफआईआर दर्ज ही नहीं और जांच कर रहे हैं इस, और जो जांच अधिकारी है वो खुद प्रयागराज के स्टैम्पेड में वो खुद उसमें गुनाहगार है. विश्व विश्वास पंत उसके अंदर उसको खुद गुनाहगार है. तो ये साबित करता है पूरी तरीके से एसआईटी केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए. और कोई 15 दिन नहीं, 15 महीने ले लें, ये जितने बड़े बड़े उसमें जो मछलियां हैं उनको पकड़कर जेल भेजे. मेरी मांग है तत्काल जितने 4-5 लोगों का नाम आ रहा सबको जेल भेजा जाए.
4: ये सच बात जो है अपने आप निकलती है, ये बयानबाजी तो खुद वो कर रहे हैं. जब एसआईटी जांच चल रही है तो उनको इस पर कुछ बोलने नहीं चाहिए. ये दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, क्या होगा, आने देते तो. ये बहुत बड़ा मामला है, राष्ट्र स्तर का मामला है.
5: कमाल हो गया कि वो योगी आदित्यनाथ जो आरोप लगते ही बुलडोजर चलाने की बात करते थे, वो सरकार जो तुरंत कहती थी कि कब किसकी गाड़ी पलट जाएगी, जिस सरकार ने कभी जांच और कानून और कोर्ट का इंतजार नहीं किया, आज वो सरकार कह रही है कि जांच का हम इंतजार करेंगे. क्यों इतनी सहानुभूति चंदा चोरों के साथ क्यों है? क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ ये कहते कि हमारे पास जिन जिन के नाम आएंगे कल ही उनके घरों पर बुलडोजर चलाऊंगा और उनके घरों को नेस्तनाबूद कर दूंगा। ये सहानुभूति चंदा चोरों के प्रति क्यों दिखाई जा रही है, इसको समझने में मुझे मुश्किल है।
6: आपसे बेहतर राम मंदिर को और राम मंदिर परिसर को कौन समझता है? आज चप्पे चप्पे में सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हैं, चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर कर रहे हैं और फिर एक दुरुस्त ऑडिट सिस्टम ट्रस्ट के जरिए लागू भी किया गया, बावजूद इसके ये चोरी हो जाती है।
7: जो आपने अभी कहा कि सिस्टम लागू किया गया था, आदेश निर्देश तो जारी हुए, मैंने देखा है वो निर्देश कि काउंटिंग में किस प्रकार से अनुशासन का पालन होना चाहिए, सभी विवरण उसमें हैं और अलग अलग जिम्मेदारी भी तय है। SBI की क्या जिम्मेदारी होगी, ट्रस्ट की क्या जिम्मेदारी होगी, यह भी प्रारंभ में कहा गया है कि पूरी व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन शायद निगरानी में ऐसा लगता है मुझे कि सारे निर्देशों का अनुपालन कदाचित 10% से अधिक नहीं हुआ। दैट मीन्स द इंस्ट्रक्शंस वेयर इश्यूड एंड टुडे दे स्टैंड मोर इन वायलेशन देन कंप्लायंस। तो मुख्य कठिनाई यही है और इसीलिए भविष्य का सुधार आवश्यकता है कि ये इन्फोर्स कैसे करें।
6: जो ट्रस्ट के दो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनकी चुप्पी को लेकर विपक्ष तमाम सवाल राज्य सरकार पर उठा रहा है और ट्रस्ट को घेर रहा है। तो जो ट्रस्ट के जो शीर्ष लीडरशिप हैं, चाहे वो चंपत राय हों, अनिल मिश्रा हों, गोपाल राय हों, उनसे भी SIT पूछताछ कर रही है। तो इनकी भी जवाबदेही उतनी ही बनती है जितनी की 39 लोगों की जो इस गिनती के काम में लगे हुए थे।
7: अलग अलग होगी। एक तरफ तो अपराध का में जो लगा हुआ है, जो डुअर है, उसको आप कहें कि वो जो 40 से 44 लोग रहे दो शिफ्ट में, उनकी जिम्मेदारी डायरेक्ट होगी। इन लोगों की अलग अलग डिग्री की आप जिम्मेदारी तय करेंगे कि इन्होंने निगरानी क्या रखी। तो ये तो एक तरीके से टॉप के लोग थे जिनको यह सुनिश्चित करना था कि जो आदेश निर्गत हुए हैं उसको किस तरीके से उसका अनुपालन किया जा रहा है। और जहाँ तक श्री चंपत राय जी का प्रश्न है, चूँकि वो एक वरिष्ठता में ज्येष्ठतम व्यक्ति हैं वहाँ पर, तो हर कार्य की निगरानी वह स्वयं कर सकेंगे ये संभव तो नहीं है, लेकिन प्रबंधन में कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, उन कंट्रोल पॉइंट्स पे यदि आप टैप रखे हैं तो हाईएस्ट लेवल पे।
1: And a high-level delegation from Trinamool Congress led by Party General Secretary Abhishek Banerjee met with Lok Sabha Speaker Om Birla to formally demand the disqualification of 20 MPs from TMC in a major political confrontation. TMC delegation submitted 20 different petitions aimed at parliamentarians who had recently defected to the National Citizens Party of India. The party is advocating for swift constitutional action against rebels for changing political allegiances. Meanwhile, as per sources, Lok Sabha Speaker Om Birla will take final call on plea of rebels before the monsoon session.
8: ये घटना unprecedented है। आज तक ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम लोग दमदम विमान बंदर कहते हैं, ऐसा घटना आज तक नहीं घटी है। यहाँ पे लगभग 20-25 मिनट अभिषेक बनर्जी का जो क्रिमिनल सिंडिकेट है उनके कम से कम 60-70 क्रिमिनल एंटी सोशल्स यहाँ पे तांडव किए। यहाँ पे जिस टाइम पे ये हुआ, यहाँ पे VVIP मूवमेंट भी चल रहा था, हम लोगों के माननीय आदरणीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार भी पास कर रहे थे, उसको भी दिक्कत में पड़ना पड़ा।

0: अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
1: तो एसआईटी किसकी जांच कर रही है? ना एफआईआर है, किसकी जांच हो रही है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ये तो केवल लोगों को एक भ्रमित करने का माध्यम है और लोगों को ठगने का माध्यम है। एफआईआर दर्ज ही नहीं और जांच कर रहे हैं इस, और जो जांच अधिकारी है वो खुद प्रयागराज के स्टैम्पेड में, वो खुद उसमें गुनाहगार है। विश्व विश्वास पंत उसके अंदर, उसको खुद गुनाहगार है। तो ये साबित करता है पूरी तरीके से एसआईटी केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए, और कोई 15 दिन नहीं 15 महीने ले लें, ये जितने बड़े बड़े उसमें जो मछलियां हैं उनको पकड़कर जेल भेजे। मेरी मांग है तत्काल जितने 4-5 लोगों का नाम आ रहा सबको जेल भेजा जाए।
2: ये सच बात जो है अपने आप निकलती है, ये बयानबाजी तो खुद वो कर रहे हैं। जब एसआईटी जांच चल रही है तो उनको इस पर कुछ बोलने नहीं चाहिए कि दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, क्या होगा, आने देते तो ये बहुत बड़ा मामला है, राष्ट्र स्तर का मामला है।
3: कमाल हो गया कि वो योगी आदित्यनाथ जो आरोप लगते ही बुलडोजर चलाने की बात करते थे, वो सरकार जो तुरंत कहती थी कि कब किसकी गाड़ी पलट जाएगी, जिस सरकार ने कभी जांच और कानून और कोर्ट का इंतजार नहीं किया, आज वो सरकार कह रही है कि जांच का हम इंतजार करेंगे। क्यों इतनी सहानुभूति चंदा चोरों के साथ क्यों है? क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ ये कहते कि हमारे पास जिन जिन के नाम आएंगे कल ही उनके घरों पर बुलडोजर चलाऊंगा और उनके घरों को निस्ते नाबूद कर दूंगा? ये सहानुभूति चंदा चोरों के प्रति क्यों दिखाई जा रही है, इसको समझने में मुझे मुश्किल है।
4: आपसे बेहतर राम मंदिर को और राम मंदिर परिसर को कौन समझता है? आज चप्पे चप्पे में सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हैं, चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर कर रहे हैं और फिर एक दुरुस्त ऑडिट सिस्टम ट्रस्ट के जरिए लागू भी किया गया, बावजूद इसके ये चोरी हो जाती है।
5: जो आपने अभी कहा कि सिस्टम लागू किया गया था, आदेश निर्देश तो जारी हुए, मैंने देखा है वो निर्देश कि काउंटिंग में किस प्रकार से अनुशासन का पालन होना चाहिए, सभी विवरण उसमें हैं और अलग अलग जिम्मेदारी भी तय है। एसबीआई की क्या जिम्मेदारी होगी, ट्रस्ट की क्या जिम्मेदारी होगी, यह भी प्रारंभ में कहा गया है कि पूरी व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन शायद निगरानी में ऐसा लगता है मुझे कि सारे निर्देशों का अनुपालन कदाचित 10% से अधिक नहीं हुआ। दैट मीन्स द इंस्ट्रक्शंस वेयर इश्यूड एंड टुडे दे स्टैंड मोर इन वायलेशन देन कंप्लायंस। तो मुख्य कठिनाई यही है और इसीलिए भविष्य का सुधार आवश्यकता है कि ये इन्फोर्स कैसे करें।
4: जो ट्रस्ट के दो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनकी चुप्पी को लेकर विपक्ष तमाम सवाल राज्य सरकार पर उठा रहा है और ट्रस्ट को घेर रहा है। तो जो ट्रस्ट के जो शीर्ष लीडरशिप हैं, चाहे वो चंपत राय हों, अनिल मिश्रा हों, गोपाल राय हों, उनसे भी एसआईटी पूछताछ कर रही है। तो इनकी भी जवाबदेही उतनी ही बनती है जितनी की 39 लोगों की जो इस गिनती के काम में लगे हुए थे?
5: अलग अलग होगी। एक तरफ तो अपराध का में जो लगा हुआ है, जो डूअर है, उसको आप कहें कि वो जो 40 से 44 लोग रहे दो शिफ्ट में, उनकी जिम्मेदारी डायरेक्ट होगी। इन लोगों की अलग अलग डिग्री की आप जिम्मेदारी तय करेंगे कि इन्होंने निगरानी क्या रखी। तो ये तो एक तरीके से टॉप के लोग थे जिनको यह सुनिश्चित करना था कि जो आदेश निर्गत हुए हैं उसको किस तरीके से उसका अनुपालन किया जा रहा है। और जहाँ तक श्री चंपत राय जी का प्रश्न है, चूँकि वो एक वरिष्ठता में ज्येष्ठतम व्यक्ति हैं वहाँ पर, तो हर कार्य की निगरानी

0: वह स्वयं कर सकेंगे ये संभव तो नहीं है, लेकिन प्रबंधन में कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, उन कंट्रोल पॉइंट्स पे यदि आप टैप रखे हैं तो हाईएस्ट लेवल पे।
1: And a high-level delegation from Trinamool Congress led by Party General Secretary Abhishek Banerjee met with Lok Sabha Speaker Om Birla to formally demand the disqualification of 20 MPs from TMC in a major political confrontation. TMC delegation submitted 20 different petitions aimed at parliamentarians who had recently defected to the National Citizens Party of India. The party is advocating for swift constitutional action against rebels for changing political allegiances. Meanwhile, as per sources, Lok Sabha Speaker Om Birla will take final call on plea of rebels before the monsoon session.
2: ये घटना unprecedented है। आज तक ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम लोग दमदम विमान बंदर कहते हैं, ऐसा घटना आज तक नहीं घटी है। यहाँ पे लगभग 20-25 मिनट अभिषेक बनर्जी का जो क्रिमिनल सिंडिकेट है, उनके कम से कम 60-70 क्रिमिनल एंटी सोशल्स यहाँ पे तांडव किए। यहाँ पे जिस टाइम पे ये हुआ, यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट भी चल रहा था। हम लोगों के माननीय आदरणीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार भी पास कर रहे थे, उसको भी दिक्कत में पड़ना पड़ा।

0: for the examination reallocation, and they have availed this facility. As coming to Rahul Gandhi's acquisitions, the center government is very clear that Rahul Gandhi is trying to mislead the students, he's trying to do politics, and he's using them as a political pawn for to mean his own political end. That's why Rahul Gandhi has to be very cautious. Some action should be taken against Rahul Gandhi. This is what center government is saying, and they're also saying that Rahul Gandhi should not mislead the students and not use them as their political.
1: Akhilesh Sharma getting us all those details, talking to us about what Rahul Gandhi has said and how center has hit back as far as all these allegations from the opposition is concerned. Let's also break down what this entire controversy is about. The Abu Dhabi Exam Center row, how it started, and the NTA had to come forward and clarify this entire issue. Abu Dhabi was picked via candidate login. That's what the NTA has said. The change of NEET city request was sought on the 19th of June, and it was done via the student login. That's what NTA has said so far. Now, center has changed the process. That process began immediately. The center was changed once the student had put in that request into the system, and the candidate's father contacted to complete the formalities. It also exemplifies NTA's student-first approach. The city correction window opened on rescheduling. About 3.2 lakh candidates used correction facility. 99.5% candidates got their preferred exam city. This only points out to the kind of volume of students that we are dealing with and the manner in which we're making sure that all the requests are taken care of. Let's talk about the story. A massive national security grid is logged in as the NTA prepares for the re-meet this Sunday. A nationwide mock drill is taking place across 5,000 centres to test rigorous anti-cheat systems. Paramilitary forces are on alert. High-level monitoring centre is tracking social media ahead of the drill to ensure security readiness for high-stakes re-meet examination. Over 2.5 lakh security personnel are enforcing a zero failure operation, from military grade GPS tracking to IAF airlifts and mandatory Aadhaar biometric checks. NTA is leaving absolutely zero room for any kind of error. Let's also get you the ground reports from different parts of the country. Our correspondent gets you a ground report from MD College in Parel, Mumbai, highlighting the security arrangements.
2: NEET examination, National Test Agency has started conducting mock drill here at Maulana Azad Memorial College. Here are two NEET centers. So already the mock drill has started. So nationwide mock drill will be continuing at all about 5,500 centers in 551 cities. And here in Jammu also, the mock drill is being conducted. They are trying to ensure that free and fair examination. Foolproof security arrangement. And there's a free and fair examination system. Students do not face any kind of a problem, and this time they will not be even allowed to carry with them pen. The pens will also be provided here inside the examination hall. So that is the kind of a scrutiny that will be maintained here during the mock drill also and during the examination also. So everything is being checked. So everything, the proper rehearsal is right now going on here inside MAM College. Pradeep Datta with Neeraj Kumar for NDTV.
3: Right now, we are standing at one of the biggest examination center in Bihar, and that is called Bapu Pariksha Center in Patna. And there, the NEET examination mock drill will take shortly, because the NEET exam will conduct tomorrow across the country. And therefore, you can see the paramilitary forces as well as the Bihar police forces have been deployed here. More than 46,000 students from Patna will appear in this re-NEET examination tomorrow in Patna, and as well as 95 centers is been made across the Patna for the re-NEET examination. And that is why you can see paramilitary force as well as the Bihar police has been also deployed here at the examination center in Patna. In Patna with cameraperson Asis, this is Raman Rai for NDTV.
4: To ensure that the NEET UG re-exam remains completely foolproof and transparent, this time the NTA is conducting a mega mock drill across the centers in Mumbai and the nation. At present, we are here outside an exam center in Parel, which is the Maharshi Dayanand College, and we see that security measures are being taken since morning so that the entire exam process tomorrow remains transparent. All of the important sheets like the OMR sheets and the question papers this time has been entrusted with the paramilitary forces to ensure that there's no leak that takes place, and also that during the examination process too, all of the CCTV cameras will be examined thoroughly so that the exam takes place in a smooth way and there are no cheating practices that happen while the NEET UG exam is underway. From Mumbai with video journalist Sagar, this is Sujata Dwivedi reporting for NDTV.
1: But what are the guidelines that the authorities have issued for the students? Now, the students can carry a transparent water bottle. That's allowed inside the examination hall. They can also carry their admit card in a transparent plastic pouch. Candidates may wear articles or objects of faith, depending on which faith they belong to. They have to report at the examination center early to facilitate frisking and checking that may be mandatorily conducted at different centers. Candidates may wear full sleeve garments if required. This is something that is not allowed in certain examinations, but in NEET it's allowed. Slippers and low-heeled footwear, that is the preferred option. Candidates in high heels may face additional screening as well. So those are the guidelines that have been issued by the authorities. The exam all set to happen in few hours from now. Now, the Ram Mandir donation row has rapidly escalated from allegations of financial irregularities to a full-fledged SIT investigation. The controversy began on the 7th of June with claims of 5 to 7 crore in alleged misappropriation of devotees' offering, triggering a political storm and demands for transparency. As questions mounted, the Yogi Adityanath government constituted a 3-member special investigation team on 13 June, giving it 15 days to submit its finding. Since arriving in Ayodhya, the SIT has examined donation records, questioned trust officials, scrutinized cash counting process, reviewed the CCTV and verified records related to donated jewellery and the valuables in question. Multiple complaints have been filed. Dozens of employees come under scanner and investigators are now tracing the money, examining the role of key suspects. With the probe entering a crucial phase, all eyes are on the SIT's report, which is expected to determine a point in the direction whether this is a mere administrative lapse or a criminal wrongdoing or perhaps a larger conspiracy involving temple donations.
5: Ram bhaktoon par, kar sevakon par, goli chalane aur jai sri ram bolne par laathi bhaanjne wale log aaj updesh dene chale hain, updesh dene chale hain. बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं.
6: तो एसआईटी किसकी जांच कर रही है? ना एफआईआर है, किसकी जांच हो रही है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन ही नहीं है. ये तो केवल लोगों को एक भ्रमित करने का माध्यम है और लोगों को ठगने का माध्यम है. एफआईआर दर्ज ही नहीं और जांच कर रहे हैं इस, और जो जांच अधिकारी है वो खुद प्रयागराज के स्टैम्पेड में वो खुद उसमें गुनाहगार है. विश्व विश्वास पंत उसके अंदर उसको खुद गुनाहगार है. तो ये साबित करता है पूरी तरीके से एसआईटी केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए. और कोई 15 महीने ले लें, ये जितने बड़े बड़े उसमें जो मछलियां हैं उनको पकड़कर जेल भेजे. मेरी मांग है तत्काल जितने 4-5 लोगों का नाम आ रहा सबको जेल भेजा जाए.
7: ये सच बात जो है अपने आप निकलती है, ये बयानबाजी तो खुद वो कर रहे हैं. जब एसआईटी जांच चल रही है तो उनको इस पर कुछ बोलने नहीं चाहिए. ये दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, क्या होगा, आने देते तो. ये बहुत बड़ा मामला है, राष्ट्र स्तर का मामला है.
8: कमाल हो गया कि वो योगी आदित्यनाथ जो आरोप लगते ही बुलडोजर चलाने की बात करते थे, वो सरकार जो तुरंत कहती थी कि कब किसकी गाड़ी पलट जाएगी, जिस सरकार ने कभी जांच और कानून और कोर्ट का इंतजार नहीं किया, आज वो सरकार कह रही है कि जांच का हम इंतजार करेंगे. क्यों इतनी सहानुभूति चंदा चोरों के साथ क्यों है? क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ ये कहते कि हमारे पास जिन जिन के नाम आएंगे कल ही उनके घरों पर बुलडोजर चलाऊंगा और उनके घरों को निस्तेनाबूद कर दूंगा. ये सहानुभूति चंदा चोरों के प्रति क्यों दिखाई जा रही है, इसको समझने में मुझे मुश्किल है।
9: आपसे बेहतर राम मंदिर को और राम मंदिर परिसर को कौन समझता है? आज चप्पे चप्पे में सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हैं, चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर कर रहे हैं और फिर एक दुरुस्त ऑडिट सिस्टम ट्रस्ट के जरिए लागू भी किया गया, बावजूद इसके ये चोरी हो जाती है।
10: जो आपने अभी कहा कि सिस्टम लागू किया गया था, आदेश निर्देश तो जारी हुए, मैंने देखा है वो निर्देश कि काउंटिंग में किस प्रकार से अनुशासन का पालन होना चाहिए, सभी विवरण उसमें हैं और अलग अलग जिम्मेदारी भी तय है। SBI की क्या जिम्मेदारी होगी, ट्रस्ट की क्या जिम्मेदारी होगी, यह भी प्रारंभ में कहा गया है कि पूरी व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन शायद निगरानी में ऐसा लगता है मुझे कि सारे निर्देशों का अनुपालन कदाचित 10% से अधिक नहीं हुआ। दैट मीन्स द इंस्ट्रक्शंस वेयर इश्यूड एंड टुडे दे स्टैंड मोर इन वायलेशन देन कंप्लायंस। तो मुख्य कठिनाई यही है और इसीलिए भविष्य का सुधार आवश्यकता है कि ये इन्फोर्स कैसे करें।
9: जो ट्रस्ट के दो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनकी चुप्पी को लेकर विपक्ष तमाम सवाल राज्य सरकार पर उठा रहा है और ट्रस्ट को घेर रहा है। तो जो ट्रस्ट के जो शीर्ष लीडरशिप हैं, चाहे वो चंपत राय हों, अनिल मिश्रा हों, गोपाल राय हों, उनसे भी SIT पूछताछ कर रही है। तो इनकी भी जवाबदेही उतनी ही बनती है जितनी की उन 40 लोगों की जो इस गिनती के काम में लगे हुए थे।
10: अलग अलग होगी। एक तरफ तो अपराध का में जो लगा हुआ है, जो डुअर है, उसको आप कहें कि वो जो 40 से 44 लोग रहे दो शिफ्ट में, उनकी जिम्मेदारी डायरेक्ट होगी। इन लोगों की अलग अलग डिग्री की आप जिम्मेदारी तय करेंगे कि इन्होंने निगरानी क्या रखी। तो ये तो एक तरीके से टॉप के लोग थे जिनको यह सुनिश्चित करना था कि जो आदेश निर्गत हुए हैं उसको किस तरीके से उसका अनुपालन किया जा रहा है। और जहाँ तक श्री चंपत राय जी का प्रश्न है, चूँकि वो एक वरिष्ठता में ज्येष्ठतम व्यक्ति हैं वहाँ पर, तो हर कार्य की निगरानी वह स्वयं कर सकेंगे ये संभव तो नहीं है, लेकिन प्रबंधन में कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, उन कंट्रोल पॉइंट्स पे यदि आप टैप रखें तो हाईएस्ट लेवल पे।
1: And a high-level delegation from Trinamool Congress led by Party General Secretary Abhishek Banerjee met with Lok Sabha Speaker Om Birla to formally demand the disqualification of 20 MPs from TMC in a major political confrontation. TMC delegation submitted 20 different petitions aimed at parliamentarians who had recently defected to the National Citizens Party of India. The party is advocating for swift constitutional action against rebels for changing political allegiances. Meanwhile, as per sources, Lok Sabha Speaker Om Birla will take final call on plea of rebels before the monsoon session.
11: ये घटना unprecedented है। आज तक ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम लोग दमदम विमान बंदर कहते हैं, ऐसा घटना आज तक नहीं घटी है। यहाँ पे लगभग 20-25 मिनट अभिषेक बनर्जी का जो क्रिमिनल सिंडिकेट है उनके कम से कम 60-70 क्रिमिनल एंटी सोशल्स यहाँ पे तांडव किए। यहाँ पे जिस टाइम पे ये हुआ, यहाँ पे VVIP मूवमेंट भी चल रहा था। हम लोगों के माननीय आदरणीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार भी पास कर रहे थे, उसको भी दिक्कत में पड़ना पड़ा।

0: ले
1: आपसे बेहतर राम मंदिर को और राम मंदिर परिसर को कौन समझता है? आज चप्पे चप्पे में सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हैं, चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर कर रहे हैं और फिर एक दुरुस्त ऑडिट सिस्टम ट्रस्ट के जरिए लागू भी किया गया, बावजूद इसके ये चोरी हो जाती है।
2: जो आपने अभी कहा कि सिस्टम लागू किया गया था, आदेश निर्देश तो जारी हुए, मैंने देखा है वो निर्देश कि काउंटिंग में किस प्रकार से अनुशासन का पालन होना चाहिए, सभी विवरण उसमें हैं और अलग अलग जिम्मेदारी भी तय है। SBI की क्या जिम्मेदारी होगी, ट्रस्ट की क्या जिम्मेदारी होगी, यह भी प्रारंभ में कहा गया है कि पूरी व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन शायद निगरानी में ऐसा लगता है मुझे कि सारे निर्देशों का अनुपालन कदाचित 10% से अधिक नहीं हुआ। दैट मीन्स द इंस्ट्रक्शंस वेयर इश्यूड एंड टुडे दे स्टैंड मोर इन वायलेशन देन कंप्लायंस। तो मुख्य कठिनाई यही है और इसीलिए भविष्य का सुधार आवश्यकता है कि ये इन्फोर्स कैसे करें।
1: जो ट्रस्ट के दो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनकी चुप्पी को लेकर विपक्ष तमाम सवाल राज्य सरकार पर उठा रहा है और ट्रस्ट को घेर रहा है। तो जो ट्रस्ट के जो शीर्ष लीडरशिप हैं, चाहे वो चंपत राय हों, अनिल मिश्रा हों, गोपाल राय हों, उनसे भी SIT पूछताछ कर रही है। तो इनकी भी जवाबदेही उतनी ही बनती है जितनी की 39 लोगों की जो इस गिनती के काम में लगे हुए थे?
2: अलग अलग होगी। एक तरफ तो अपराध का में जो लगा हुआ है, जो डूअर है, उसको आप कहें कि वो जो 40 से 44 लोग रहे दो शिफ्ट में, उनकी जिम्मेदारी डायरेक्ट होगी। इन लोगों की अलग अलग डिग्री की आप जिम्मेदारी तय करेंगे कि इन्होंने निगरानी क्या रखी। तो ये तो एक तरीके से टॉप के लोग थे जिनको यह सुनिश्चित करना था कि जो आदेश निर्गत हुए हैं उसको किस तरीके से उसका अनुपालन किया जा रहा है। और जहाँ तक श्री चंपत राय जी का प्रश्न है, चूँकि वो एक वरिष्ठता में ज्येष्ठतम व्यक्ति हैं वहाँ पर, तो हर कार्य की निगरानी वह स्वयं कर सकेंगे संभव तो नहीं है, लेकिन प्रबंधन में कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, उन कंट्रोल पॉइंट्स पे यदि आप टैप रखें तो हाईएस्ट लेवल पे।
3: And a high-level delegation from Trinamool Congress led by Party General Secretary Abhishek Banerjee met with Lok Sabha Speaker Om Birla to formally demand the disqualification of 20 MPs from TMC in a major political confrontation. TMC delegation submitted 20 different petitions aimed at parliamentarians who had recently defected to the National Citizens Party of India. The party is advocating for swift constitutional action against rebels for changing political allegiances. Meanwhile, as per sources, Lok Sabha Speaker Om Birla will take final call on plea of rebels before the monsoon session.
4: ये घटना unprecedented है। आज तक ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम लोग दमदम विमान बंदर कहते हैं, ऐसा घटना आज तक नहीं घटी है। यहाँ पे लगभग 20-25 मिनट अभिषेक बनर्जी का जो क्रिमिनल सिंडिकेट है उनके कम से कम 60-70 क्रिमिनल एंटी सोशल्स यहाँ पे तांडव किए। यहाँ पे जिस टाइम पे ये हुआ, यहाँ पे VVIP मूवमेंट भी चल रहा था। हम लोगों के माननीय आदरणीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार भी पास कर रहे थे, उसको भी दिक्कत में पड़ना पड़ा।
3: स्ट्रेट फ्रॉम द
0: the heart of the newsroom to the core of the story.

0: in the direction, whether this is a mere administrative lapse or a criminal wrongdoing or perhaps a larger conspiracy involving temple donations.
1: राम भक्तों पर कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
2: एसआईटी किसकी जांच कर रही है? न एफआईआर है, किसकी जांच हो रही है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ये तो केवल लोगों को एक भ्रमित करने का माध्यम है और लोगों को ठगने का माध्यम है। एफआईआर दर्ज ही नहीं और जांच कर रहे हैं इस, और जो जांच अधिकारी है वो खुद प्रयागराज के स्टैम्पेड में, वो खुद उसमें गुनाहगार है। विश्व विश्वास पंत उसके अंदर, उसको खुद गुनाहगार है। तो ये साबित करता है पूरी तरीके से एसआईटी केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए, और कोई 15 दिन नहीं, 15 महीने ले लें, ये जितने बड़े बड़े उसमें जो मछलियां हैं उनको पकड़कर जेल भेजे। मेरी मांग है तत्काल जितने 4-5 लोगों का नाम आ रहा सबको जेल भेजा जाए।
3: ये सच बात जो है अपने आप निकलती है कि बयानबाजी तो खुद वो कर रहे हैं। जब एसआईटी जांच चल रही है तो उनको इस पर कुछ बोलने नहीं चाहिए कि दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, क्या होगा, आने देते तो ये बहुत बड़ा मामला है, राष्ट्र स्तर का मामला है।
4: कमाल हो गया कि वो योगी आदित्यनाथ जो आरोप लगते ही बुलडोजर चलाने की बात करते थे, वो सरकार जो तुरंत कहती थी कि कब किसकी गाड़ी पलट जाएगी, जिस सरकार ने कभी जांच और कानून और कोर्ट का इंतजार नहीं किया, आज वो सरकार कह रही है कि जांच का हम इंतजार करेंगे। क्यों इतनी सहानुभूति चंदा चोरों के साथ क्यों है? क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ ये कहते कि हमारे पास जिन जिन के नाम आएंगे कल ही उनके घरों पर बुलडोजर चलाऊंगा और उनके घरों को नेस्तनाबूद कर दूंगा? ये सहानुभूति चंदा चोरों के प्रति क्यों दिखाई जा रही है, इसको समझने में मुझे मुश्किल है।
5: आपसे बेहतर राम मंदिर को और राम मंदिर परिसर को कौन समझता है? आज चप्पे चप्पे में सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हैं, चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर कर रहे हैं और फिर एक दुरुस्त ऑडिट सिस्टम ट्रस्ट के जरिए लागू भी किया गया, बावजूद इसके ये चोरी हो जाती है।
6: जो आपने अभी कहा कि सिस्टम लागू किया गया था, आदेश निर्देश तो जारी हुए, मैंने देखा है वो निर्देश कि काउंटिंग में किस प्रकार से अनुशासन का पालन होना चाहिए, सभी विवरण उसमें हैं और अलग अलग जिम्मेदारी भी तय है। एसबीआई की क्या जिम्मेदारी होगी, ट्रस्ट की क्या जिम्मेदारी होगी, यह भी प्रारंभ में कहा गया है कि पूरी व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन शायद निगरानी में ऐसा लगता है मुझे कि सारे निर्देशों का अनुपालन कदाचित 10% से अधिक नहीं हुआ। दैट मीन्स द इंस्ट्रक्शंस वेयर इश्यूड एंड टुडे दे स्टैंड मोर इन वायलेशन देन कंप्लायंस। तो मुख्य कठिनाई यही है और इसीलिए भविष्य का सुधार आवश्यकता है कि ये इन्फोर्स कैसे करें।
5: जो ट्रस्ट के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनकी चुप्पी को लेकर विपक्ष तमाम सवाल राज्य सरकार पर उठा रहा है और ट्रस्ट को घेर रहा है। तो जो ट्रस्ट के जो शीर्ष लीडरशिप हैं, चाहे वो चंपत राय हों, अनिल मिश्रा हों, गोपाल राय हों, उनसे भी एसआईटी पूछताछ कर रही है। तो इनकी भी जवाबदेही उतनी ही बनती है जितनी की उन 40 लोगों की जो इस गिनती के काम में लगे हुए थे?
6: अलग अलग होगी। एक तरफ तो अपराध का में जो लगा हुआ है, जो डुअर है, उसको आप कहें कि वो जो 40 से 44 लोग रहे दो शिफ्ट में, उनकी जिम्मेदारी डायरेक्ट होगी। इन लोगों की अलग अलग डिग्री की आप जिम्मेदारी तय करेंगे कि इन्होंने निगरानी क्या रखी। तो ये तो एक तरीके से टॉप के लोग थे जिनको यह सुनिश्चित करना था कि जो आदेश निर्गत हुए हैं उसको किस तरीके से उसका अनुपालन किया जा रहा है। और जहाँ तक श्री चंपत राय जी का प्रश्न है, चूँकि वो एक वरिष्ठता में ज्येष्ठतम व्यक्ति हैं वहाँ पर, तो हर कार्य की निगरानी वह स्वयं कर सकेंगे ये संभव तो नहीं है, लेकिन प्रबंधन में कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, उन कंट्रोल पॉइंट्स पे यदि आप टैप रखें तो हाईएस्ट लेवल पे।
0: And a high-level delegation from Trinamool Congress led by Party General Secretary Abhishek Banerjee met with Lok Sabha Speaker Om Birla to formally demand the disqualification of 20 MPs from TMC in a major political confrontation. TMC delegation submitted 20 different petitions aimed at parliamentarians who had recently defected to the National Citizens Party of India. The party is advocating for swift constitutional action against rebels for changing political allegiances. Meanwhile, as per sources, Lok Sabha Speaker Om Birla will take final call on plea of rebels before the monsoon session.
7: ये घटना unprecedented है। आज तक ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम लोग दमदम विमानबंदर कहते हैं, ऐसा घटना आज तक नहीं घटी है। यहाँ पे लगभग 20-25 मिनट अभिषेक बनर्जी का जो क्रिमिनल सिंडिकेट है उनके कम से कम 60-70 क्रिमिनल एंटी सोशल्स यहाँ पे तांडव किए। यहाँ पे जिस टाइम पे ये हुआ, यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट भी चल रहा था। हम लोगों के माननीय आदरणीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार भी पास कर रहे थे, उसको भी दिक्कत में पड़ना पड़ा।
8: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
9: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
10: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
11: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
12: योर फ्रेंड सेड ये ले ले, we said maybe not.
13: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
0: Now, multiple big developments on the US-Iran peace talks in Switzerland amid the back-channel talks to make a breakthrough in the talks. US Vice President J.D. Vance has stated that Kushner and Witkoff are in Lucerne for talks. Meanwhile, Iranian media has reported that Iranian Foreign Minister Araghchi will be traveling to Switzerland. US Vice President J.D. Vance has also said that he could head to Lucerne in the coming days, adding that discussions have been going on for hours and are progressing well. Tensions remain high in one of the key flashpoints, Strait of Hormuz. Iranian media has reported that Iranian forces have once again shut the strait, accusing US and Israel of violating understanding and alleging continued attacks on Lebanon. US has denied reports and said that the Strait of Hormuz remains open and they are in talks with Iran. Let's get you the special report. My colleague Vishnu Soam gets you more details. Have a look.
14: Well, the very latest news that we actually have at this juncture is that the Iranian Foreign Minister, Mr. Araghchi, will be on his way to Lucerne, where I am right now. The talks between Iran and the United States, absolutely critical over a period of time, because remember, all that has taken place so far is a memorandum of understanding between Iran and the United States. The technical aspects of this deal are still to be worked out. Throughout the day, this is a story that has changed several times. It began with news that perhaps the Iranians were on their way. Then it turned out that they weren't on their way. Then the Strait of Hormuz was closed. In fact, according to Iran, it remains closed. And now the news is that the Iranian foreign minister will be coming. But what is this actually going to result in? That's the key question. Experts tell us that the talk process itself is extremely tenuous and closely linked at this juncture to what Israel has to say. And Israel, remember, is not part of the talks at all. Israel, however, has an important stake in the West Asia crisis. Why? Simply because they continue to face threats, they say, from Hezbollah in Lebanon, and they keep responding. If Israel responds, then the prospects of a lasting peace are unlikely, because clause number one of the agreement is that Israel will stop its attacks on Hezbollah. So it's all pretty complicated. But for now, let's hope that these talks do in fact take place. In Luzerne, Vishnu Shom for NDTV.
0: And White House officials bade farewell to one of the two jets that have been used to transport U.S. presidents for more than 30 years on Thursday. The aging aircraft is one of the two heavily modified Boeing aircrafts that entered service in 1990 and are designated Air Force One when the president is abroad.
15: President Trump was seen signing something once again. However, this time it's not a deal but a mechanical panel. America is bidding farewell to one of the two jets that have been used to transport U.S. presidents for 36 years. As one jet steps down, a new one has officially joined the presidential fleet. This is the highly modified Boeing 7478i aircraft, one that was originally configured as a luxury transport for the Qatari royal family. However, it was later acquired for the American presidency, an act that America referred to as an unconditional gift.
16: The workmanship of this plane is, when you see it, you won't believe it, actually. The quality of woods, the quality of the materials, the quality of the engines. These engines are the finest, they're the best in the world, nothing like it. So it's really an honor, and I want to thank the Emir of Qatar.
15: Air Force One is the official air traffic control call sign assigned to any U.S. Air Force fixed-wing aircraft the President of the United States happens to be on. The current Air Force One aircrafts were introduced in 1990 under President George H.W. Bush. It consists of two highly customized Boeing 747-200B jumbo jets, which were given the military designation VC-25A. The jet provides a massive 4,000 square feet of interior floor space that is spread across three distinct levels. It also carries advanced nuclear shielding and is built to function as military command centers during a worst-case national crisis. What sets the 1990 jets apart is its ability to take on fuel mid-air. While its standard unrefueled range is roughly 7,800 miles, this ability allows the plane to theoretically stay airborne indefinitely. From a presidential suite and conference room to a medical room and gym, the Air Force One is a one-stop solution for all potential needs of a U.S. president. Now, as America welcomes Qatar's gift of the $400 million jet, the U.S. government has also contracted plane maker Boeing to deliver two new aircrafts to serve as the presidential jet. But the program has suffered delays and cost overruns. Meanwhile, major ethical and constitutional issues continue to be raised about what kind of gifts a president should receive from abroad, and should such an aircraft donated by a foreign power be used as the ultra-sensitive presidential plane? Bureau report for NDTV World.
0: And UK Prime Minister Keir Starmer is set to face another challenge. He's facing calls to set a timetable for his departure from the Downing Street. This comes after Greater Manchester Mayor Andy Burnham cruised to victory in a high-stakes by-election in Northern England. Who is Andy Burnham, and does he hold the support to topple the Labour leadership? Here's a special report.
17: I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected.
18: From here on, I will give everything I have got to make it so, to ensure the name Makerfield is forever synonymous with bringing about the change this country needs.
15: Is Britain on the verge of another political earthquake?

0: system. Students do not face any kind of a problem. And this time, they will not be even allowed to carry with them pen. The pens will also be provided here inside the examination hall. So that is the kind of a scrutiny that will be maintained here during the mock drill also and during the examination also. So everything is being checked. So everything, the proper rehearsal is right now going on here inside MAM College. Pradeep Datta with Neeraj Kumar for NDTV.
1: Right now, we are standing at one of the biggest examination center in Bihar, and that is called Bapu Pariksha Center in Patna. And there, the re-NEET examination mock drill will take shortly, because the re-NEET exam will conduct tomorrow across the country. And therefore, you can see the paramilitary forces as well as the Bihar police forces have been deployed here. More than 46,000 students from Patna will appear in this re-NEET examination tomorrow in Patna, and as well as 95 centers is been made across the Patna for the re-NEET examination. And that is why you can see paramilitary force as well as the Bihar police has been also deployed here at the examination center in Patna. In Patna with cameraperson Asis, this is Raman Rai for NDTV.
2: To ensure that the NEET UG re-exam remains completely foolproof and transparent, this time the NTA is conducting a mega mock drill across the centers in Mumbai and the nation. At present, we are here outside an exam center in Parel, which is the Maharshi Dayanand College, and we see that security measures are being taken since morning so that the entire exam process tomorrow remains transparent. All of the important sheets like the OMR sheets and the question papers this time has been entrusted with the paramilitary forces to ensure that there's no leak that takes place, and also that during the examination process too, all of the CCTV cameras will be examined thoroughly so that the exam takes place in a smooth way and there are no cheating practices that happen while the NEET UG exam is underway. From Mumbai with video journalist Sagar, this is Sujata Dwivedi reporting for NDTV.
3: But what are the guidelines that the authorities have issued for the students? Now, the students can carry a transparent water bottle. That's allowed inside the examination hall. They can also carry their admit card in a transparent plastic pouch. Candidates may wear articles or objects of faith, depending on which faith they belong to. They have to report at the examination center early to facilitate frisking and checking that may be mandatorily conducted at different centers. Candidates may wear full sleeve garments if required. This is something that is not allowed in certain examinations, but in NEET it's allowed. Slippers and low heel footwear, that is the preferred option. Candidates in high heels may face additional screening as well. So those are the guidelines that have been issued by the authorities. The exam all set to happen in few hours from now. Now, the Ram Mandir donation row has rapidly escalated from allegations of financial irregularities to a full-fledged SIT investigation. The controversy began on the 7th of June with claims of 5 to 7 crore in alleged misappropriation of devotee's offering, triggering a political storm and demands for transparency. As questions mounted, the Yogi Adityanath government constituted a 3-member special investigation team on 13th June, giving it 15 days to submit its finding. Since arriving in Ayodhya, the SIT has examined donation records, questioned trust officials, scrutinized cash counting process, reviewed the CCTV and verified records related to donated jewelry and the valuables in question. Multiple complaints have been filed. Dozens of employees come under scanner and investigators are now tracing the money, examining the role of key suspects. With the probe entering a crucial phase, all eyes are on the SIT's report, which is expected to determine a point in the direction whether this is a mere administrative lapse or a criminal wrongdoing or perhaps a larger conspiracy involving temple donations.
4: Ram bhaktoon par, kar sevakon par, goli chalane aur jai sri ram bolne par laathi bhaanjne wale log aaj updesh dene chale hain, updesh dene chale hain. बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
5: एसआईटी किसकी जांच कर रही है? न एफआईआर है, किसकी जांच हो रही है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ये तो केवल लोगों को एक भ्रमित करने का माध्यम है और लोगों को ठगने का माध्यम है। एफआईआर दर्ज ही नहीं और जांच कर रहे हैं इस, और जो जांच अधिकारी है वो खुद प्रयागराज के स्टैम्पेड में, वो खुद उसमें गुनाहगार है। विश्व विश्वास पंत उसके अंदर उसको खुद गुनाहगार है। तो ये साबित करता है पूरी तरीके से एसआईटी केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए, और कोई 15 दिन नहीं 15 महीने ले लें, ये जितने बड़े बड़े उसमें जो मछलियां हैं उनको पकड़कर जेल भेजे। मेरी मांग है तत्काल जितने 4-5 लोगों का नाम आ रहा सबको जेल भेजा जाए।
6: ये सच बात जो है अपने आप निकलती है कि बयानबाजी तो खुद वो कर रहे हैं। जब एसआईटी जांच चल रही है तो उनको इस पर कुछ बोलने नहीं चाहिए कि दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, क्या होगा, आने देते तो ये बहुत बड़ा मामला है, राष्ट्र स्तर का मामला है।
7: कमाल हो गया कि वो योगी आदित्यनाथ जो आरोप लगते ही बुलडोजर चलाने की बात करते थे, वो सरकार जो तुरंत कहती थी कि कब किसकी गाड़ी पलट जाएगी, जिस सरकार ने कभी जांच और कानून और कोर्ट का इंतजार नहीं किया, आज वो सरकार कह रही है कि जांच का हम इंतजार करेंगे। क्यों इतनी सहानुभूति चंदा चोरों के साथ क्यों है? क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ ये कहते कि हमारे पास जिन जिन के नाम आएंगे कल ही उनके घरों पर बुलडोजर चलाऊंगा और उनके घरों को नेस्तनाबूद कर दूंगा। ये सहानुभूति चंदा चोरों के प्रति क्यों दिखाई जा रही है, इसको समझने में मुझे मुश्किल है।
3: आपसे बेहतर राम मंदिर को और राम मंदिर परिसर को कौन समझता है? आज चप्पे चप्पे में सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हैं, चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर कर रहे हैं और फिर एक दुरुस्त ऑडिट सिस्टम ट्रस्ट के जरिए लागू भी किया गया, बावजूद इसके ये चोरी हो जाती है।
8: जो आपने अभी कहा कि सिस्टम लागू किया गया था, आदेश निर्देश तो जारी हुए, मैंने देखा है वो निर्देश कि काउंटिंग में किस प्रकार से अनुशासन का पालन होना चाहिए, सभी विवरण उसमें हैं और अलग अलग जिम्मेदारी भी तय है। SBI की क्या जिम्मेदारी होगी, ट्रस्ट की क्या जिम्मेदारी होगी, यह भी प्रारंभ में कहा गया है कि पूरी व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन शायद निगरानी में ऐसा लगता है मुझे कि सारे निर्देशों का अनुपालन कदाचित 10% से अधिक नहीं हुआ। दैट मीन्स द इंस्ट्रक्शंस वेयर इश्यूड एंड टुडे दे स्टैंड मोर इन वायलेशन देन कंप्लायंस। तो मुख्य कठिनाई यही है और इसीलिए भविष्य का सुधार आवश्यकता है कि ये इन्फोर्स कैसे करें।
3: जो ट्रस्ट के दो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनकी चुप्पी को लेकर विपक्ष तमाम सवाल राज्य सरकार पर उठा रहा है और ट्रस्ट को घेर रहा है। तो जो ट्रस्ट के जो शीर्ष लीडरशिप हैं, चाहे वो चंपत राय हों, अनिल मिश्रा हों, गोपाल राय हों, उनसे भी SIT पूछताछ कर रही है। तो इनकी भी जवाबदेही उतनी ही बनती है जितनी की 39 लोगों की जो इस गिनती के काम में लगे हुए थे।
8: अलग अलग होगी। एक तरफ तो अपराध का में जो लगा हुआ है, जो डुअर है, उसको आप कहें कि वो जो 40 से 44 लोग रहे दो शिफ्ट में, उनकी जिम्मेदारी डायरेक्ट होगी। इन लोगों की अलग अलग डिग्री की आप जिम्मेदारी तय करेंगे कि इन्होंने निगरानी क्या रखी। तो ये तो एक तरीके से टॉप के लोग थे जिनको यह सुनिश्चित करना था कि जो आदेश निर्गत हुए हैं उसको किस तरीके से उसका अनुपालन किया जा रहा है। और जहाँ तक श्री चंपत राय जी का प्रश्न है, चूँकि वो एक वरिष्ठता में ज्येष्ठतम व्यक्ति हैं वहाँ पर, तो हर कार्य की निगरानी वह स्वयं कर सकेंगे ये संभव तो नहीं है। लेकिन प्रबंधन में कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, उन कंट्रोल पॉइंट्स पे यदि आप